नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज सन 2026 अगस्त महीने की 16 तारीख व दिन है रविवार। श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 मिनट

तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री सांगे बुम्पा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक सुश्री शिका देका, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अशुद्ध बर्मन, मंदपा में उद्घोषक श्री लुपसांग नोरबू तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका किसांग धामू और आप सभी का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत करती हूं।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: seed China's Shi Yuqi in the opening round. The men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will be among India's strongest medal hopes. Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will spearhead India's women's doubles challenge, while Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will lead the mixed doubles campaign. India is yet to win a world championship medal in the mixed doubles. Jagyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
1: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with a 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the hosts to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
2: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सबके बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
3: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
4: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा

0: के स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक

0: कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अताचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के

0: बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अनी समथन वांगमू और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अन्य समथन वांगमो और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं तो इसी के साथ ही भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद बुगुन गीतों का संगिया मर्फियो और साथियों की आवाजों में। श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: 30 मिनट होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वीं कक्षा के छात्र कुमारी कर्मा ड्रेमा से संतुलित आहार के लाभ विषय पर उनका विचार। श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में अब सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कर्मा ड्रेमा, पीएम श्री जेएनवी तवांग कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्र। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है संतुलित आहार के लाभ है। किसी ने बहुत सही कहा है कि थका हरा तन मन हो जाए, थका हरा तन मन हो जाए जब संतुलित भोजन पास न आए। हरी सब्जियां, फल और दालें जीवन में नई ऊर्जा ले आए। संतुलित आहार का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की जरूरत के सभी पोषक तत्व मिले हो। अच्छा भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है या हमें रोज के काम करने और पढ़ाई करने के लिए ऊर्जा देते हैं। बच्चों और युवाओं के लिए संतुलित आहार विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से होता है। सही आहार से हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि होती है और हमारा दिमाग तेज रहता है। जब हम अच्छे खाते हैं तो हमें पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी होती है और हमें बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। संतुलित आहार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। आज के समय में जब तरह तरह की बीमारियां फैल रहे हैं तब एक मजबूत इम्यून सिस्टम हमें स्वस्थ में मदद करते हैं। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि हम अपनी उम्र के हिसाब से कैलोरी लेना चाहिए। बढ़ते बच्चों को सादा और बड़ों को संतुलित कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। साथ ही सादा मीठा और तली भुनी चीजों से बचना चाहिए ताकि हमारा हृदय और मांसपेशियां मजबूत रहे। अच्छा भोजन हमारे पाचन तंत्र को सही रखते हैं और वजन को नियंत्रित करता है। इससे हमारे त्वचा, बाल और दांत भी स्वस्थ रहते हैं। पिंकी बबली और उमंग भोजन करते देखो संग, पिंकी खाती गजर आलू, बबली खाती तीखे तमोलू। पालन पनीर उमंग को बाय, तीनों ने मिलकर खीर भी खाए। पौष्टिक आहार तुम भी खाओ, अच्छा सेहत तुम भी पाओ। संतुलित आहार से बच्चों और किशोरों में लंबाई और वजन का सही विकास होते हैं। इससे कफ्स, गैस और पेट दर्द जैसे समस्याएं कम होती हैं। इससे सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियों से भी बचाव होती है। संतुलित आहार जीवन को गुणवत्ता में सुधार कर लंबी उम्र में सहायक होता है। हमें हर रोज कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। पोषक तत्व भरपूर आहार बेहतर नींद लाने में योगदान देते हैं जिससे आराम में मदद मिलते हैं। रोजाना एक सेब खाए डॉक्टर से दूर रहे। रोजाना एक सेब खाए डॉक्टर से दूर रहे, पौष्टिक खाना खाए, तंदुरुस्त जीवन जिए। जंक फूड का परित्याग ही बीमारियों को जड़ से मिटाए। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम रोज सही समय पर स्वस्थ भोजन खाएं, जैसे फल सब्जियां और घर का बना हुआ खाना खाएं, तो हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम रोजाना संतुलित भोजन करें तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। इसलिए हमें जंक फूड से बचकर पौष्टिक और संतुलित भोजन को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।
0: श्रोताओं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जेएनवी तवांग के 11वें विज्ञान के छात्र कुमारी कर्मा ड्रेमा से संतुलित आहार के लाभ विषय पर उनका विचार। श्रोताओं तो इसी के साथ ही हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:33 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं यह संदेश।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

श्रोताओं, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत अभी आप आनंद ले रहे थे चंद बुगुन गीतों का, संज्ञा मर्फियो और साथियों की आवाजों में। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मेरे वे 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:00।

0: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
1: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं। सिंघम फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में सवानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है अजय अतुल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आनंद लेते हैं। राबता फिल्म से अतीफ असलम की आवाज में इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जैम 8 ने।

श्रोताओं, इस वक्त बना ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए अब आनंद लेते हैं गुडबाय फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में यह गीत। सवानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अजय अतुल ने।

रॉय फिल्म से आइए अब आना लेते हैं मीट ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर के युगल आवाजों में यह गीत। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है मीट ब्रदर्स ने।

ओम शांति ओम फिल्म से आइए बना लेते हैं केके की आवाज में यह गीत। विशाल ददलानी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं कार्यक्रम के अंतिम गीत आइए आनंद लेते हैं आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के आवाजों में प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

0: fields. Cumming House has secured 10 points, Swansea House has secured 12 points, Siang House has secured 10 points, and Lohit House has secured 15 points. And after completion of all the rounds, Cumming House has secured 50 points, Swansea House has secured 56 points, Siang House has secured 52 points, and Lohit House has secured 78 points. With this, the quiz competition has been won by Lohit House. In second position is Subansiri House, in third position it's Siang House, and in fourth position it's Cumming House. Thank you.
1: With this, we come to the end of today's quiz competition. I hope our esteemed listeners have enjoyed it. And I thank all the participants for participating in today's quiz competition. And I also congratulate each and every participant and to the winners. Congratulations. Thank you so much.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम युवावाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत क्विज कंपटीशन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा मासिक कार्यक्रम युवावाणी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आर के सूर्य नारायण जी से वीणावादन। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम रागरंग।

श्रोताओं, कार्यक्रम रागरंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आर के सूर्य नारायण जी से वीणा वादन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने यह बात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर कही। श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र निर्माण, समावेशी नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव के प्रति उनकी वचनबद्धता भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका अतुलनीय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों की चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र सहित 3 विषयों के प्रश्न पत्रों में संभावित त्रुटियों से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के बारे में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएंगी। एनटीए ने उम्मीदवारों से केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाटोन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इसमें भागीदारी निशुल्क है और 3 सदस्यीय टीमों में छात्र और स्वतंत्र शोधकर्ता भाग ले सकते हैं। विजेता टीम को साइबर केसरी 2026 की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें पारंपरिक गधा भेंट की जाएगी। उप विजेताओं को रुस्तम और पहलवान की उपाधि से नवाजा जाएगा।

का। झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी पहली बार भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के 22वें दिन छात्र नेताओं ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। भारत मंगलवार 18 अगस्त को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कल इस सिलसिले में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन रोपण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमसिवायम ने किचूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। इस जनमत संग्रह में 170 प्रतिनिधियों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 8 ने इसके खिलाफ वोट दिया। पुदुचेरी के भारत में विलय को 16 अगस्त 1962 को कानूनी मान्यता मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया। भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और कराईकल में आंधी तूफान और बिजली गिरने का भी अनुमान जताया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल में लक्ष्य सेन ने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी का पहले दौर में मुकाबला मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिशा ओली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगे। मिक्स डबल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी जीत। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा। ओडिशा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो गया है। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और भद्रक जिले के कई गांव पानी में डूब गए हैं। अखुआपरा में बैतरानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सालंदी, गेंगुती और कोचिला नदियों के बढ़ते जलस्तर ने भद्रक में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

Lama

我在美业经验老多一些的人也都不经验却要工作就能用作给

Gazette,

Song

诸葛亮呀，马呀，呀的呀，孙。

Tamja yen ma nga wa

Yeah.

Ah,

Yurdu, one barazo, barasang, ye, be, a, jerundu, so,

Yeah,

Alo me agonjo somoya la

Kayamas,

Yeah,

Chaya,

Yeah,

Zimbaya, Jenny, I see you.

天道为尊的道，一切众佛都为耶娑罗族，俱悲阿罗摩耶那摩耶罗，阿耶娑阿耶娑罗耶罗。

了。白天呀，昨天呀，叫我叫我，去叫我呀，送门呀，走完了。哎呀，走，哎呀，走了。

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में हम आपको अवगत करवाएंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। आइए पहले जानते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों में

यानी संध्या के 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम जदुनरी में आप सुनेंगे अमा लुपसंग वांगमो और साथियों से युनचक सुम्पा गादन लागेमा युनतन शिग्योमा ग्यावे शब्दन संगचुई मुनलम तुंगवा शुक्पा और झमे युनतन। आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिल कवाली, इनमें आप आनंद लेंगे नुसरत फतेह अली खान साहब के गाए चंद कवाली। आज शाम 7:25 पर कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में एक गीत का पाठ। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से विजय प्रकाश और मुंबई के अन्य गायकों द्वारा गाए एक देशभक्ति गीत। आज रात्रि 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं कल यानी 17 अगस्त 2026 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा 2:00 PM मिड डे न्यूज के साथ, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित जसराज जी की आवाज में चंद हिंदी देवगीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद ईदो मिश्मी आधुनिक गीतों का संगम लिंगी और अतोके म्यूलों के आवाजों में। कल दोपहर 3:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पीएम श्री जेएनवी दबांग के 8वीं कक्षा के छात्र कुमारी यशील हामू से एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया विषय पर उनका विचार। कल दोपहर 3:33 पर नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में, निर्जा फिल्म से कविता सेठ की आवाज में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाजों में, केदारनाथ फिल्म से देव नेगी की आवाज में और आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्रा की युगल आवाजों में चंद हिंदी फिल्म गीत। कल दोपहर 3:50 पर हिंदी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे राबता फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, कपूर एंड सन्स फिल्म से आर्को की आवाज में, तमाशा फिल्म से अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बनी दयाल, नाजिया हसन और सुनिधि चौहान की आवाजों में, मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की आवाजों में, जबरिया जोड़ी फिल्म से यसीर दसाई और अल्तमश फरीदी की आवाजों में, सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में, बर्फी फिल्म से सुनिधि चौहान और पपोन की आवाजों में, छिचोरे फिल्म से तुषार जोशी की आवाजों में और एक मैं और एक दो फिल्म से बनी दयाल और अनुष्का मनचंदा की आवाजों में चंद हिंदी फिल्म गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे उस

तद बिस्मिल्लाह खान और साथियों से शहनाई वादन कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर कल शाम 5 बजे मुनपा कार्यक्रम नमधर लेरिम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मुनपा में कल शाम 5:35 पर मुनपा कार्यक्रम थ्रेतन लपचा शाम 6 बजे लरिम सेना 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा कल शाम 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम शेदुन लरिम में आप सुनेंगे तवांग मठ के लामा पेम्पा और साथियों से लामा छोईपा। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे रिनपोचेला और अन्य भिक्षुको द्वारा गाए ग्यावे शब्दन शुदन और गोवा मुनलम। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर कल शाम 7:10 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण शाम 7:30 पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत। इनमें पहला गीत का आप आनंद लेंगे फिल्म दबंग से राहत फतेह अली खान साहब और श्रेया घोषाल की आवाजों में और अंतिम गीत का आह्वान देंगे फिल्म मोहब्बतें से लता मंगेशकर उदित नारायण मनोहर शेट्टी ईशान और सुहेल वटवेकर की आवाजों में। शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा ओरिजिनल न्यूज 7:50 पर कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे 72 आवर्स फिल्म से सुखवेंद्र सिंह और अनुपेरिया चटर्जी के युगल आवाजों में एक देशभक्ति गीत। कल रात्रि 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत। इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं ये तो थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और अब हमसे जुड़े हुए हैं मेरे में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मुनपा में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की

0: ताकत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government has introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Earlier in the day, Mr. Shah unveiled a statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at Chittorgarh district of Rajasthan on the death anniversary of the veteran leader. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kattan Kulathur near Chennai, the Vice President said India's youth have a vital role to play in the country's journey

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिले कवाली। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे नुसरत फतेह अली खान साहब की बेहतरीन पारंपरिक कवालियों का खूबसूरत संग्रह। श्रोताओं

0: श्रोताओं, कार्यक्रम महफिली कवाली के अंतर्गत अभी आप आनंद ले रहे थे नुसरत फतेह अली खान साहब के कुछ बेहतरीन पारंपरिक कवालियों का खूबसूरत संग्रह। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिली कवाली अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ, आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कवि मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में एक गीत का पाठ, और इनके साथ सहयोग दे रहे हैं नालिनी जी। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ।
1: देश की तारीफ में आज हम आपको एक बहुत मशहूर कौमी तराना सिखाएंगे। उसके बोल मालूम है क्या है? सारे जहां से अच्छा, ये गाना आपने सुना है?
2: यस सर।
1: तो आप लोग सीखेंगे ना?
2: यस सर।
1: और हमारे साथ नलिनी जी भी आपको ये गाना सिखाएंगे। आपको मालूम है ये गाना किसने लिखा है? इकबाल। बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं जिन्होंने देश की तारीफ में ये गाना बहुत साल पहले लिखा है। तो आप लोग कागज पेंसिल निकालिए और गाना लिखिए। सारे जहां से अच्छा,
2: सारे जहां से अच्छा।

हिंदोस्तां हमारा, लिख लिया ना? आगे लिखिए, हम बुलबुलें, हम बुलबुलें, बुलबुले नहीं बुलबुलें, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।

0: मिसालें हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा, तो बच्चों ये तो हो गई इसकी स्थाई। अब लिखिए इसका पहला अंतरा, पर्वत वो, हाँ पर्वत नहीं पर्वत बा लिखना है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, और इसके बाद फिर पहली लाइन आ गई कि सारे जहां से। अच्छा तो अब पहला अंतरा लिख लिया ना आपने, अब दूसरा अंतरा लिखिए, गोदी में खेलती हैं, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, आगे लिखिए, गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा, इसके बाद फिर पहली लाइन आ जाएगी सारे जहां से। अच्छा तो अब तीसरा अंतरा लिखिए, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये दो बार तो ऐसे आएगा है, हिंदी है हम, हिंदी है हम, और तीसरी बार हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदोस्तान हमारा, और इसके बाद फिर पहली लाइन आएगी सारे जहां से। अच्छा तो आप लोगों ने ये गाना लिख लिया ना सबने, अच्छा इस गाने की ताल है बच्चों कहरवा, क्या नाम है इसका ताल का, और इसमें चार मात्रा होती हैं, कितनी मात्रा होती हैं,
1: चार,
0: तो इसको पहले तबले पे सुनो।

ये तो इसकी ताल हुई। अब आपके समझ में आ गया कि कहरवे की ताल क्या होती है। अब बच्चों इस गाने को हम लय में पढ़ के आपको बताएंगे और आपने भी साथ साथ याद करना है ताकि आपको इस गाने की लय की बोल बाट समझ में आ जाए।

0: तो बच्चों अब पूरे गाने की आपको लय की बोल बाट समझ में आ गई ना?
1: यस सर।
0: अच्छा अब इसको हम आपको स्वर में सिखाएंगे। तो नन्ही जी ये गाना कौन से स्वर से है?
2: पहले काले से।
0: पहले काले से। तो बाजे में देखिए पहला काला कहाँ है?

0: मजहब नहीं सिखाता। अब इसको स्वर में देखिए कैसे है।
1: मजहब नहीं सिखाता,
2: मजहब नहीं सिखाता।
0: ये अंतरा नी से शुरू होगा।

0: ये पूरे एंट्रेस के आपको याद हुए ना कुछ कुछ?
1: यस सर।
0: अच्छा, अब इसका हमें, नन्ही जी आप गाइए इसको, तीसरा अंतराय बच्चों से जरा फिर गवाइए, मजहब नहीं सिखाता।

श्रोताओं, कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कवि मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में गीत का पाठ, और इनके साथ सहयोग दे रहे थे नालिनी जी। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तपांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रैनोमी। राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का निधन आज ही के दिन वर्ष 2018 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में केवल 13 दिनों का रहा। इसके बाद उन्होंने 1998 से 1999 तक 11 महीने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और फिर 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने के राज्य की तैयारियों और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 19,99,702 रुपए का योगदान दिया है। ये दान आज औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सौंपा गया। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए SBI की टीम डिब्रूगढ़ के डिप्टी जनरल मैनेजर और ईटानगर के रीजनल मैनेजर का समय पर योगदान देने के लिए आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज नामसाई जिला विधायक चाओ जिग्नू नामचुंग के साथ महाबोधि लॉर्ड बुद्ध कॉलेज के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नामसाई में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण

0: कदम है। इस अवसर पर कॉलेज की 6 महत्वपूर्ण सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें कॉलेज भवन विस्तार, प्रदर्शनी हॉल, सम्मेलन हॉल, कॉलेज पुस्तकालय, सेमिनार हॉल और मैत्री गर्ल्स होम शामिल है। ये सुविधाएं विद्यार्थियों को शैक्षणिक अध्ययन, शोध, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा उनके समग्र विकास के लिए बेहतर वातावरण और सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाबोधि लॉर्ड बुद्ध कॉलेज का विशेष महत्व है, क्योंकि ये संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित ज्ञान, करुणा, अनुशासन और शांति जैसे शाश्वत मूल्यों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। यिंगकियोंग जिला अस्पताल के साथ साथ सिमोंग और रामसिंग स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्रों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण हासिल किया है। ये उपलब्धि जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस उपलब्धि से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को कल यिंगकियोंग के जनरल ग्राउंड में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। NQAS के तहत मरीजों के अधिकार एवं संतुष्टि, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सेवाएं, संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण, सुरक्षित एवं स्वच्छ स्वास्थ्य वातावरण, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता, कुशल प्रबंधन एवं रिकॉर्ड रखरखाव तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अंजाव जिले के सारथी में लापता 3 लोगों के तलाश के लिए चौथे दिन भी आज खोज एवं बचाव अभियान जारी रहा। अंजाव जिले की जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार NDRF की टीम ने लगभग सुबह 8:45 पर खोज अभियान शुरू किया। अभियान में SDRF की टीम भी सहयोग कर रही है। टीमें लोहित नदी के निचले प्रभाव वाले क्षेत्रों तथा उन स्थानों पर विशेष रूप से तलाश कर रही है, जहां तेज नदी के धारा के कारण लापता लोगों के बहकर पहुंचने की संभावना है। DDMA द्वारा पूरे अभियान का समन्वय किया जा रहा है। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस और मेडिकल टीम को भी तैयार रखा गया है। दिबांग वैली में पशुओं के बीच खुरपका मुंहपका रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रयास जारी है। पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग, त्वरित प्रतिक्रिया दल, जिला प्रशासन तथा भारत सरकार की टीम मिलकर उपचार, निगरानी और रोग नियंत्रण के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम आज एकत्र किए गए नमूनों और अन्य सैंपल को आगे की प्रयोगशाला जांच के लिए लेकर अननी को से रवाना हुई। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। State Bank of India, the country's largest public sector bank, has contributed ₹19,99,702 towards the Chief Minister's Relief Fund to strengthen the state's preparedness and response to disasters caused by floods and cloud bursts. The donation was formally handed over to Chief Minister Pema Khandu today. Meanwhile, CM Khandu, in a social media post, has extended his appreciation to the SBI team, including the Deputy General Manager Dibrugarh and the Regional Manager Itanagar, for the timely contribution. Deputy Chief Minister Chona Men, along with MLA Namsai Chao Jignu Namchum, today inaugurated the Mahabodhi Lord Buddha College new buildings, marking an important step towards strengthening higher education infrastructure and creating better learning opportunities for the youth of Namsai. On the occasion, 6 important facilities were inaugurated, including the college building extension, exhibition hall, conference hall, college library, seminar hall and Maitri Girls Home. These facilities will provide students with improved spaces for academic learning, research, cultural activities and overall development. Speaking on the occasion, Deputy Chief Minister said that Mahabodhi Lord Buddha College carries a special significance as an institution that seeks to combine quality education with the timeless values of knowledge, compassion, discipline and peace inspired by the teachings of Lord Buddha. District Hospital Yingkiong, along with Ayushman Arogya Mandir subcenters at Simong and Ramsing, has achieved National Quality Assurance Standards certification, marking a significant milestone in quality health care delivery in the district. The officers and staff associated with the achievement were felicitated during the 88th Independence Day celebration at General Ground, Yingkiong.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो के करीब इस वक्त रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आइए इन्हीं नगमों का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नलेश्वर नगर नरवाल महाराष्ट्र के पीएस नवगर निर्माला नवगर और विशाल नवगर जी की ओर से और साथ ही मलकापुर के नारायण इंगल सोपन तयादी और आशीष मुरहेकर जी की ओर से। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है काम चोर फिल्म का यह गीत जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत के गीत रचयिता है इंदवार तथा संगीत संयोजन है राजेश रोशन।

छपरा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी की ओर से आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है उपकार फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है महेंद्र कपूर ने। इस गीत की गीत रचयिता है गुलशन भावरा तथा संगीत संयोजन है कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, इस वक्त बाना ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मीरठ के दिग्दर्शन गौर, कविता गौर, संजय, संदीप माकड़, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शाबाई जी की ओर से। और साथ ही निमानाबाद जिंद हरियाणा के जसवीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है सोल्जर फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है जसवीन्द्र नरोला और सोनू निगम ने। इस गीत के गीत रचयिता है समीर तथा संगीत संयोजन है अन्नू मलिक।

श्रोताओं, अब यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है कुपर गांव की सुरेश मलोड़ी और वर्षा मलोड़ी जी की ओर से, और साथ ही शिव गांव के श्री राम गुंधाली और उषा गुंधाली जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है दीवाना फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। इस गीत की गीत रचयिता है समीर तथा संगीत संयोजन है नदीम श्रवण।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किया आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। दोबारा सुनिएगा, 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादव भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ 9 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने गोल में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए थे। वहीं एक और खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां बांग्लादेश ने कंगारुओं को हरा करके रचा है टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास। बात की जाएगी कार्यक्रम में महिला हॉकी विश्व कप की, जहां भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलते हुए इस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम को एक कड़ी टक्कर दी है। और बैडमिंटन का मैदान अब सज चुका है राजधानी नई दिल्ली में, जहां कल से शुरू होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। और अंत में कार्यक्रम में बात की जाएगी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं गोल में। भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाकर के अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन का शानदार योगदान दिया। दिन का पहला सत्र बारिश के कारण पूरी तरीके से धुल गया। इसके बाद भारत ने अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू किया। और क्रिकेट की खबरों पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, आज के मैच पहला सेशन जिस तरह से गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना मौका मिल पाएगा खेलने का, इतने रन बन पाएंगे, लेकिन भारत ने कह सकते हैं एक मजबूत पकड़ हासिल कर ली है मैच में।
1: जी शक्ति, बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश आज हो रही थी उस समय ऐसा ही लग रहा था कि आज का खेल जो है वो धुल जाएगा, लेकिन देवदत्त पड्डीकल जब बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए तो उसी लय में नजर आए और शानदार बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत ने भी उनका अच्छा साथ निभाया, 39 रन का योगदान दिया, लेकिन जब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 68 गेंदों पर 51 रन बनाए उन्होंने। एक अच्छी पारी, एक बैलेंस्ड पारी उन्होंने खेली और टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ाया। लास्ट में मानव सुथार ने भी 43 गेंद पर 24 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 460 रन के स्कोर तक पहुंचा है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक मजबूत पकड़ भारत ने आज हासिल कर ली और दो ही सेशन का खेल हो पाया। आपने देवदत्त पड्डीकल की बात की, इसके पहले इस खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैच खेले थे, 90 रन बनाए थे, लेकिन कह सकते हैं कि सारी भरपाई कर दी इस तीसरे मुकाबले में।
1: जी बिल्कुल, और कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हैं। नंबर 3 पर श्रीलंका की धरती पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने का

0: रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है, और इसके साथ ही साथ वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं नंबर तीन पर खेलते हुए जिन्होंने 150 प्लस स्कोर बनाया है श्रीलंका की धरती पर। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ने कर पाया था। इसके अलावा अगर शक्ति बात करें तो इंडिपेंडेंस डे के दिन शतक लगाने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन चुके हैं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय शतकों की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली की लिस्ट को ज्वाइन किया है जिन्होंने ओडीआई शतक लगाया था। तो इसके अलावा अगर कहीं कहा जाए तो 2024 के बाद नंबर तीन पर किसी ने शतक लगाया ही नहीं था भारत के लिए टेस्ट में। 19 मुकाबलों के बाद, 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद देवदत्त पडिक्कल निखर कर आए और उन्होंने शतक जमाया।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं, और इस शतक का और मोल तब बढ़ेगा जब भारत इस मुकाबले में जीत हासिल करता है, और शायद वो स्वतंत्रता दिवस के शतक की जो लहर है वो और मजबूत होती भी नजर आएगी। भारत को 2 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, इसके बाद भारतीय टीम अगला टेस्ट जो है वो 19 नवंबर को खेलेगी। बीच में एक लंबा फासला है और बहुत तेजी से बदलती हुई WTC की टेबल है जो आपका स्लॉट फिक्स करेगी फाइनल में। लेकिन भारत के साथ ही आज बात होनी चाहिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टेस्ट क्रिकेट में सफेद जर्सी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है, और 23 साल बाद वो टेस्ट श्रृंखला खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली ये बांग्लादेश की टीम बनी है, जिसने डार्विन में पहले टेस्ट मैच में जब उसको चौथी पारी में जीत के लिए 57 रन की आवश्यकता थी, टीम ने महज 1 विकेट खोकर के ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और जिस तरह का ये पूरा का पूरा मुकाबला रहा, आज शादमान इस्लाम 25 रन और मोमिनुल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे, और वो जीत दिलाई जो शायद दशकों तक बांग्लादेश क्रिकेट में और विश्व क्रिकेट में याद की जाएगी। भारत जैसा मजबूत देश, न्यूजीलैंड जैसी टीम भी उनकी धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराने से पहले कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने कर दिखाया।
0: जी बिल्कुल शक्ति, और ऑस्ट्रेलिया जब मैदान पर उतरी तो उन्होंने टॉस के साथ ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे बल्लेबाजी चुन के कि वो इस मुकाबले को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने पहली पारी से ही मुकाबले पर पकड़ बनानी मजबूत कर दी। उनके गेंदबाज हसन महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लिए और पहले ऐसे गेंदबाज बने, बांग्लादेशी गेंदबाज बने, जिन्होंने 5 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर और 198 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद तंजीद हसन जो कि पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाया और 426 रन के स्कोर तक टीम को पहुंचाया। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज ने तीसरी पारी में शानदार 5 विकेट हॉल लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया, और आखिरी पारी में तो सबने देखा ही कि बांग्लादेश ने किस तरीके से आसान जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है शक्ति, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने तीसरे प्रयास में ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीत लिया है, जबकि पाकिस्तान को 7 और भारत को 12 मुकाबले लगे थे। तंजीद हसन, मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, इन सब खिलाड़ियों की जितनी भी बात करें उतनी कम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रंगना हैरत का 433 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और वो बाएं हाथ के गेंदबाज सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में, और जोश हेजलवुड ने भी 300 विकेट का आंकड़ा जो है छू लिया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला चला और बहुत ही ऐतिहासिक ये मैच, जहां बांग्लादेश तीसरी एशियाई टीम बनी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीतने वाली।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं कि सफेद जर्सी में ऑस्ट्रेलिया को हराना हर टेस्ट प्लेइंग नेशन का एक ख्वाब होता है, और इसके पहले जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच खेलने उतरी थी तो उसे जिम्बाब्वे से 1 पारी और 85 रन से हार का सामना करना पड़ा था, और काफी आलोचना हुई थी उस टीम की। लेकिन कह सकते हैं कि एक नई रणनीति, नए जोश के साथ उतरी, और ये वही बांग्लादेश टीम है जिसने इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय श्रृंखला में 2-1 से हराया है, पाकिस्तान को टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराया है, आयरलैंड पे 2-0 की जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा उदय नजर आता हुआ इस टीम का क्रिकेट के मैदान पर, और एक बहुत शानदार जीत जो शायद ये टीम, इस टीम का हर खिलाड़ी अपने दिल में सालों सालों तक सजो के रखेगा। और अब क्रिकेट के मैदान के बाद बात की जाए हॉकी की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत एक दमदार प्रदर्शन के साथ की है। भारत ने 2024 ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। सुनते हैं इस मैच पर ये रिपोर्ट।
2: अम्स्टेलविन के वागिनर हॉकी स्टेडियम में चीन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करने उतरी भारतीय महिला टीम भले ही नतीजे को जीत में तब्दील नहीं कर सकी, लेकिन टीम ने अपने शानदार खेल की बदौलत मुकाबले को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत की ओर से नवनीत और दीपिका ने गोल किए। भारत ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। भारत को मैच के 8वें मिनट में पहली सफलता मिली जब नेहा ने डी के बाहर से

0: गेंद सर्किल में भेजी, जिस पर नवनीत ने अंतिम टच देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। 14वें मिनट में चीन की झांग यिंग ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भारत ने एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाया। दीपिका ने शानदार प्रयास करते हुए चीनी सर्किल में प्रवेश किया और बेस लाइन तक पहुंचकर फाउल हासिल किया, जिससे भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने खुद जिम्मेदारी संभाली और बेहतरीन ड्रैग फ्लिक के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। भारत ने 2-1 की बढ़त बना ली और इसी स्कोर के साथ हाफ टाइम तक आगे रहा। हालांकि 39वें मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जहां मा निंग ने शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर गेंद को भारतीय गोल में पहुंचा दिया और स्कोर 2-2 कर दिया। चौथे क्वार्टर में चीन ने विजयी गोल के लिए लगातार हमले किए, जबकि भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले के जरिए मौके तलाशे। मैच के अंतिम मिनटों में चीन को पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार संयम दिखाते हुए सभी खतरों को टाल दिया। आखिरकार दोनों टीमें निर्णायक गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम अब 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला पूल डी मुकाबला खेलेगी। भारत की नज़र इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली जीत दर्ज करने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार शुरुआत कर दी है, अब पुरुष टीम जो पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हरा चुकी है, अब कल अपना दूसरा मुकाबला शाम 6:30 बजे से भारतीय समय अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और अब बात की जाए नई दिल्ली में सेट हो चुके BWF विश्व बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप के स्टेज की, जो कि कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु और भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इस प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। 2009 के बाद यह दूसरा मौका है जब भारत इस वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस 30वीं BWF विश्व चैंपियनशिप में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भारतीय सरजमी पर अपना दमखम आजमाते नजर आएंगे।
2: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पिछले महीने जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद अपनी शानदार फॉर्म को इस टूर्नामेंट में भी बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी। पीवी सिंधु 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रही हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भारत की दूसरी प्रतिनिधि है, वहीं पुरुष सिंगल्स में 2021 में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारतीय चुनौती रखेंगे। आयुष को एक कठिन शुरुआती दौर का मैच मिला है, जहां उनका मुकाबला मौजूदा विश्व विजेता और टॉप सीड चीन के शी युकी से होगा। पुरुष डबल्स की बात की जाए तो एशियाई खेलों के चैंपियन और 5वीं सीड सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन वाली अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हरिहरन, अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। महिला डबल्स में भारत को त्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी से उम्मीदें होंगी, जबकि मिक्स डबल्स में देश की 3 जोड़ियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सबसे अधिक उम्मीद ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो से होगी। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका गदे तथा आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य समेत कुल 15 पदक जीते हैं। 2011 के बाद से भारत ने हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम 1 पदक जीता है। ऐसे में अपनी सरजमीं पर खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें घरेलू दर्शकों के बीच अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर होगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कहा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों के साथ साथ जो सबसे मजबूत फैक्टर होगा वो होगा घरेलू दर्शक और अपनी घर की कंडीशंस। पीवी सिंधु ने कहा है कि वो भारतीय सरजमीं पर इस टूर्नामेंट के लिए बेहद उत्साहित हैं।
3: Definitely, it gives me a lot of confidence, and of course, I'm really looking forward to the World Championships to start. And since it's happening in India, it's I think really excited. And definitely, I mean, to answer to your question, I think after the Japan Open, I think winning that gave me a lot of boost and a lot of confidence.
1: संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सिंधु ने खेलों के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की है।
4: I think it's really good to have that scope of thinking and making it happen in India. I think PM sir has that vision that, you know, we can host

0: it. You know, there's nothing wrong in making it happen when PM sir said, you know, we want to make it happen. Now we all have to like work backwards since, you know, we have the facilities. It's just that we have to improvise it in a right way. And I'm hoping that we could, and that will be an amazing thing that even we can do it.
1: वहीं पीवी सिंधु के साथ उन्नति हुड्डा ने भी कहा कि वो भारतीय सरजमी पर खेलने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं।
2: It's my first world championships and it's happening in India. So I am really excited and looking forward for each match at a time. So I prepared well mentally and physically.
1: और आयुष शेट्टी ने अपनी तैयारियों को लेकर के क्या कहा है, चलते चलते ये भी सुन लिया जाए।
3: As far as I think world championship, I think it's a really big turn for everyone, you know, for the world's best players. I think it's a huge stage and it's happening in India. I think it's more special for me.
1: तो एक बड़ा अवसर होगा इन खिलाड़ियों के लिए और नई दिल्ली में आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देश भर में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित रहा। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहलवान शिवानी पवार ने कहा कि इस तरह की पहल हमारे दैनिक जीवन में फिटनेस को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
4: संडे ऑन साइकिल का मेरा ये पांचवा इवेंट है। संडे ऑन साइकिल हमारे निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है फिटनेस की तरफ जाने के लिए, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो घर में रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फिटनेस का एक मॉडल है।
1: और विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज पूनम विश्क ने भी इस दौरान साइकिल चलाई और लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिट इंडिया अभियान एक बेहतरीन पहल है जो साइकिल चलाना किफायती और प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ फिट रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, इसके बारे में संदेश देती है। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
7: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
6: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के

0: विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economies and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
3: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी हो

0: होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
3: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है।

0: साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state.
3: If we want to make India a fully developed nation by 2047, we need to empower the youth, the poor, farmers and women. With this objective, farmers are being provided with the Kisan Samman Nidhi scheme benefits. Dairy facilities worth 500 crore rupees are being established for livestock. Employment opportunities are being created for the youth, and the BJP government has taken steps to expand Saras Dairy for women.
2: He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price.
3: Not a single year between 2014 and 2026 has passed without the government launching a major scheme for farmers. Today, I